0: कौन के हिसाब में कितना के रखे इसमें डिफरेंस?
1: Your case number is going to be 22923, repeating 22923.